0: सा HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय द UMT इफेक्ट। स्टेप इनटू टुमारो टुडे।

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: किसने कहा था पैसे बचा?

0: बेहतर डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।

0: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: big one. FM 100.
1: This program was brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: And HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. And
3: Candyland.
1: And
4: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात
1: एंड
5: द यूएमटी इफेक्ट स्टेप इनटू टुमारो टुडे
6: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं तो देर किस बात की अमेजिंग डिस्काउंट अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
7: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazzcash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
8: At shopping of 5,000 rupees
7: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
9: आम चीजों पर समझौता क्यों करें शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल

नंबर, मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है कर डाले। 100.1 FM, your location for maximum music.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par JazzCash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे हजार रुपए का डिस्काउंट पाएं. तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक.
5: किसने कहा था पैसे बचा?
6: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
7: मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होगा,
8: चलेगी नहीं दौड़ेगी.
9: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL. खालिस

0: के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: 8:30 AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par JazzCash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
0: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft آن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: سواج سٹون, ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
4: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यूफोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं. तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
6: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं.
5: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉक नहीं करता.
7: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
6: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या.
5: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं.
7: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
6: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते.
7: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
5: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
6: और इस वजन की असल हकीकत को समझें.
5: आइए वेट से आगे का सोचें.
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
9: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.

14वीं का चांद जब निकलता है तो कैंसर स्टार वालों की काया पलटना शुरू हो जाती है। वो एकदम अरूज पे आने लग पड़ते हैं, वो एकदम बुलंदी को छूने लग पड़ते हैं और यूं लगता है जैसे इन जैसी चमक धमक किसी में है ही नहीं, जैसे इन जैसी पॉजिटिविटी इनके अंदर किसी में है ही नहीं, इन जैसी जो पोटेंशियल पावर है वो शायद लगता है किसी और में है ही नहीं। और ये तमाम चीजें कैंसर स्टार में उस वक्त होती हैं जब कैंसर स्टार के लोग 14वीं के चांद की तरह आगे बढ़ जाते हैं। ओवर द ईयर्स जब आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब चांद नीचे को आ रहा है, चांद की डाउन तारीख में, तो स्पिरिचुअलिज्म कहती है कोई एहतियात से चलो, लेकिन स्टार ये कहता है कि जो कैंसर स्टार के अंदर पैदा हुए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 22 जून से 23 जुलाई तक है, वो कैंसर स्टार के लोग हैं। और कैंसर स्टार के लोगों का निशान केकड़ा है, कैंसर स्टार के लोगों का जो पानी है वो उसका एक अंसर है, पानी की तरह है। यानी ये लोग प्यास भी बहुत लगती है कैंसर वालों को, इनको इनके गले में हर वक्त उनको चाहिए, हर वक्त पानी चाहिए, कोक चाहिए, ये लोग ये पीते रहते हैं हर वक्त। और ये ख्याल रखिएगा कि इनका जो हाकिम सैयारा है, जो ऑर्डर देने वाला सैयारा है, वो मून है, चांद है। अब चांद किस तरह से आपको आगे लेके चलता है? जब चांद बड़े अरूज पे होता है, जाहो जलाल में होता है, चमक दमक के साथ होता है, तो लिहाजा वो चांद की 14 तारीख होती है। चांद की 14 तारीख से चांद की आखिरी तारीख तक कैंसर स्टार के लोग बुलंदी को छू जाते हैं। कैंसर स्टार के लोग कोई भी नया काम करना चाहते हैं, वो अपना लकी स्टोन मून स्टोन पहने, और मून स्टोन आपको सिवाज स्टोन से मिलेगा। और सिवाज स्टोन का मून स्टोन आपने कौन सा पहनना है? क्या एक ही नाम का मून स्टोन पहनना है? बिल्कुल भी नहीं। आपने सिवाज स्टोन का मून स्टोन पहनना है, संस्कृत में चंद्रकांत ये भी मून स्टोन का नाम है, आपने ये नहीं पहनना। वो किस तरह से पता चलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको YouTube के किसी प्रोग्राम ने कह दिया कि हाँ जी आप अगर कैंसर स्टार में तो मून स्टोन पहन लें। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मून स्टोन आपका लकी पत्थर जरूर है, लेकिन मून स्टोन की कौन सी किस्म लकी है वो आप मुझको डेट बताएंगे। आप मून स्टोन की किस डेट में पैदा हो रहे हैं? आप कैंसर स्टार की किस डेट में पैदा हो रहे हैं? क्या आप ऐसी डेट में पैदा हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार नदीम पैदा हुए? अब नदीम 19 जुलाई को पैदा हुए हैं, पाकिस्तान के जो लेजेंड स्टार हैं। अब वो 19 जुलाई 1941 को पैदा हो रहे हैं। अब उन्होंने एक नॉर्मल सा मूनस्टोन पहना था, जिस पर किसी की नजर पड़ी, उन्होंने एक ज्योतिषी ने कह दिया, किसी हाथ देखने वाले ने कह दिया, अरे भाई नजीर बेग, नाम नजीर बेग था, मिर्जा नजीर बेग, आपका हाथ की लकीरें ये कहती हैं आप तो चमकते दमकते हुए स्टार बनेंगे, और अपनी डेट ऑफ बर्थ 19 जुलाई है, तो 19 जुलाई तो ये कहती है कि 19 जुलाई में आप जो पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका नाम भी चेंज होगा और आपके नाम के साथ आपकी पूरी जिंदगी अरूज पे जाएगी, पूरी जिंदगी में आप टॉप पे रहेंगे, और लिहाजा आपको मून स्टोन पहनना है, और मून स्टोन पहनना है संस्कृत चंद्रकांत मून स्टोन पहनना है। ये पत्थर का नाम है, ये है मून स्टोन, लेकिन उसकी ये काइंड है। अब जब नजीर बेग, उस वक्त के मिर्जा नजीर बेग ने और आज के एक्टर नदीम ने जब संस्कृत चंद्रकांत मून स्टोन पहना, ये पत्थर का नाम है, जब ये पहना और 15 कैरेट का पहना और राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहना, तो अचानक उनकी मुलाकात एक फिल्म डायरेक्टर एहतशाम से हुई। और एहतशाम उन दिनों चकोरी फिल्म बना रहे थे, जब उन्होंने देखा कि फिरदौसी लेकर आएंगे एक नौजवान को, अभी बीए का स्टूडेंट है, बीए करके आ रहे हैं, तो फिरदौसी ने कहा कि इनको चकोरी के कोई गाने मिल जाए। उन्होंने कहा, अरे भाई ये चकोरी के गाने नहीं गाएगा, ये चकोरी फिल्म का हीरो बनेगा और मुझे हीरो की तलाश है। और जो एक हीरो उसमें काम कर रहा था, अजीम नाम का, उसने उस फिल्म में इनकार कर दिया कि उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब मिर्जा नजीर बेग को लिया गया और मिर्जा नजीर बेग चकोरी फिल्म में आए और चकोरी फिल्म में उनका नाम नदीम रख दिया, और मून स्टोन ने क्या कमाल किया, चंद्रकांत मून स्टोन ने क्या कमाल किया कि नदीम अरूज को छूते चले गए। अब देखिए 19 जुलाई में पैदा होने वाला कैंसर स्टार का बंदा है, अब जो लोग 19 जुलाई में पैदा हुए हैं, क्या आप में से बहुत से लोग होंगे? जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है बहुत से लोग होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की गाइडलाइन चाहिए, और गाइडलाइन देने के लिए मैं कई सालों से डॉक्टर जलील असलम FM 100 इस्लामाबाद में अपने प्रोग्राम लिए आ रहा हूं। और आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सिवाज स्टोन के प्रोग्रामों को सुने और अपनी लाइफ को चेंज करें। 19 जुलाई वो है जो कि आज के एक्टर नदीम का स्टार

है और नदीम आज भी 19 जुलाई 1941 में पैदा हुए। अब 41 में पैदा होने के बावजूद आज भी नदीम लेजेंड एक्टर हैं। फिल्म में रहे, अरूज पे रहे, फिल्म में रहे, हीरो के तौर पर रहे, जब फिल्म को छोड़ा, फिल्म खत्म हुई और फिल्म के साथ ही ड्रामों में आए तो ड्रामों में भी अरूज पे रहे। क्या वजह हुई कि उन्होंने चंद्रकांत मूनस्टोन पहना और ये मूनस्टोन आपको शिवाज स्टोन से मिल जाएगा। और अगर यूं ही आप चाहते हैं कि आप अपने स्टार की रोशनी में अपनी लाइफ का जायचा पूछना चाहते हैं या रिटर्न शक्ल में या आप फोन पे पूछना चाह रहे हैं ऑनलाइन या आप शिवाज स्टोन के ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं तो आपको नंबर डायल करना है और शिवाज स्टोन का नंबर है 0333-555-0011। और मैं डॉक्टर जलील असलम बिल्कुल लाइव आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। आज का हमारा स्टार कैंसर और स्टार के साथ जो जेमस्टोन यूज हो रहा है वो मूनस्टोन है और ये मूनस्टोन आपको सिर्फ और सिर्फ शिवाज स्टोन ही से मिलेगा। शिवाज स्टोन से अपनी लाइफ के मुतालिक जायचा पूछिए, अपनी लाइफ के मुतालिक आगे बढ़िए और यही जिंदगी है। जिंदगी को रोक मत लें, जिंदगी को रोक मत लगाएं, जिंदगी को अपनी मुश्किलात में और शामिल न करें। बिकॉज ओवर द इयर्स वी डोंट नाउ बट वी श्योरली नाउ सम नाइस गाइज आउट देयर एंड व्हाट वी नाउ अबाउट देम इज नथिंग सो वी जस्ट आस्क देम टू आगे बढ़ो और अपने आप को रिटायर मत करो। अगर रिटायर कर

अपनी कौम को आगे बढ़ाना है, अपने घर वालों को आगे बढ़ाना है, तो आपको पहनना है मूनस्टोन उनके लिए जो कैंसर स्टार के लोग हैं, और कैंसर स्टार के लोग आगे बढ़े, देखें जिंदगी किधर चलती है। शिवा स्टोन को विजिट कीजिए, अभी हमारी ऑनलाइन कॉल भी चलेगी, बल्कि लाइव प्रोग्राम में अभी आप लाइव कॉल भी करेंगे FM 100 रेडियो स्टेशन इस्लामाबाद में। मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ इस प्रोग्राम को लिए आया हूँ, अपनी काया पलट लें, आपके लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है जो कि शिवाज स्टोन ही का प्रोग्राम है। शिवाज स्टोन आपकी जिंदगी बदल रहा है, अपने आप को क्यों रोक रहे हैं, अपने आप को मुश्किलात में क्यों डाल रहे हैं, आगे बढ़े। देखें यही लकी स्टोन जब आप पहनेंगे, जिनकी शादी नहीं होती वो भी लकी स्टोन पहने, जो एजुकेशन चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी लकी स्टोन पहने, जो जिंदगी को रोक बैठे हैं वो भी लकी स्टोन पहने, और यही लकी स्टोन आज के स्टार कैंसर के लिए है। कैंसर लोग ये गौर से सुन लें, अगर आप 22 जून को पैदा हुए हैं, 22 जून से 23 जुलाई तक अगर आपकी पैदाइश है, तो फिर आपका जो बहुत लकी नंबर है वो 3 और 8 है, 3 और 8, यानी अगर आप कोई भी ऐसा काम करना चाह रहे हैं छक्का लगाने का, वो 8 नंबर से करें। अगर आप कोई भी गेम की बाजी जीतना चाह रहे हैं आप 3 नंबर से करें, ये उनके लिए है जो 22 जून से 23 जुलाई को पैदा हो रहे हैं, और आपका नाम हे से है तो भी आप इस गेम में शामिल हो जाइए। और याद रखिए आपका लकी स्टोन मून स्टोन है, मून स्टोन के साथ आप पर्ल पहन लीजिए, या आपको सिर्फ शिवाज स्टोन ही के पहनने हैं, और शिवाज स्टोन आपको आगे लिए बढ़ेगा। अब इन्हीं डेट्स में जो 22 जून से 23 जुलाई में पैदा हो रहे हैं वो याद रखें, आपका लकी दिन जुमा यानी फ्राइडे है, फ्राइडे को अपना लकी डे बनाएं, फ्राइडे को आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं आप फ्राइडे से कीजिए, आप शादी करना चाह रहे हैं अपनी डेट में फ्राइडे शामिल कीजिए, आप निकाह करना चाह रहे हैं अपनी डेट में फ्राइडे शामिल कीजिए, आप कोई बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी डेट में फ्राइडे शामिल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने जिंदगी में बहुत तरक्की करनी है, मैदान की बाजी ले जानी है और खुद को बुलंदी की तरफ ले जाना है, तो नया काम करने से पहले आपके लिए फ्राइडे बेहतरीन है, और फ्राइडे को खाली मत लें। फ्राइडे के साथ आपने शिवाज स्टोन का मून स्टोन पहनना है, शिवाज स्टोन का पर्ल पहनना है, इन पत्थरों को पहन के जब आपने आगे बढ़ना है तो याद रखिएगा आपको मैं याद आऊंगा कि क्या सही पत्थर पहना दिया था, और सही पत्थर ने आपकी काया पलट दी थी। और सिर्फ आपको शिवाज स्टोन ही से मिलेगा। शिवाज स्टोन के नंबर है 0333550011, और मैं डॉक्टर जलील असलम बिल्कुल आपके साथ लाइव इस प्रोग्राम में शामिल हूं। अगर आप लकी जेम स्टोन लेना चाह रहे हैं तो भी आपको 0333550011 पे डायल करना है। शिवाज स्टोन की फेसबुक को जरूर विजिट कीजिए, शिवाज स्टोन SVAHJSTONE। शिवाज स्टोन से राब्ता करने के लिए आपको शिवाज स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है, और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। शिवाज स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333550011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉडिक हॉरिस्कोप इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334222212। आप शिवाज स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, शिवाज स्टोन SVAHJSTONE। और आप यूट्यूब पर भी मुझे देख सकते हैं, और यूट्यूब के लिए आपको यूट्यूब पे जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल, इस पे आप जाएंगे तो आप यूट्यूब पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए शिवाज स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए, और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल 1 घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं, और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं, और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं, और 1 सेकंड में 1 क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल

0: डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फ़ालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राब्ता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
4: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
6: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका
7: at shopping of 5,000 rupees
6: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!

मुझे दर्द दिल की दवा नहीं, मुझे दर्द दिल के दलाइल दे। तेरा आना मुझ पे जरूरी था, तेरे आने के कुछ मराहिल थे। हम दोनों में काफी मसाइल थे, पर हम दोनों एक दूसरे के कायल थे। कभी मिला करते थे पहाड़ों पे, कभी मिला करते थे हम साहिल पे।

0: It's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
1: At shopping of 5,000 rupees
0: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतलका शख्स

से भी जाएं कुर्बान हम सौ दफा जाना हिसाब तो कभी किया ही नहीं मेरा खुदा गवाह उसने मेरे गुनाहों का अब तक हिसाब लिया ही नहीं तोहफे तहाइफ देते ये बज़ाहिर पर दिल तो किसी ने दिया ही नहीं मेरी तेरे बगैर जो जिंदगी गुजरी वो काटी है उसे जिया

आए पे जाली जमाना मैं नए जमाने से कटर कराची बेटा हवा आने दे भाई करे बात सीधा सौ आने की एंटी चिल्लर बिके सवा आने पे।

0: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
1: At shopping of 5,000 rupees
0: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
2: जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।

0: well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
1: At shopping of 5,000 rupees
0: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे ई डिटेक्ट इंश्योरेंस मार्केट में 50 से ज्यादा बेहतरीन डिस्काउंट,
3: हैदराबाद, अबटाबाद, अक्रॉस पाकिस्तान. दिस इज FM 100.
0: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
1: At shopping of 5,000 rupees
0: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केटप्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
3: 100 FM.
5: छम छम छम किताबे लेके निकले हम. अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: इट्स हैपनिंग आज भी, सो कीप अप। बाटा पर जैस कैश से 50% कैशबैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका
1: एट शॉपिंग ऑफ 5,000 रुपीज
0: ओनली। एंड यू आर स्टिल हियर, किसका इंतजार है? भागो।

Assalamualaikum and Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum from 100 Lahore radio stations. So, jitni bhi khoobsurat samaatein sun rahi hain, sabko kehna chahenge ji Assalamualaikum and Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum from 100 Lahore radio stations. So, jitni bhi live samaatein hamein sun rahi hain is time, aur agar aap log drive kar rahe hain, because this time jo hai wo time hai 3:06 PM और आज मैं आपके साथ हूँ आरजे इरम शहजादी. जी आज बहुत जबरदस्त वंडरफुल प्रोग्राम जो है वो आज हमने किया, और अभी नेक्स्ट आपके साथ और होने जा रहा है. हमारे साथ रहिए, स्टे ट्यून, सुनते रहिए फिर 100 लाहौर रेडियो स्टेशन से लाइव. मैं हूँ आपके साथ आरजे इरम शहजादी. और जी आप सबको आजादी जो है वो बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि अगस्त का महीना है और ये महीना जो है वो आजादी का महीना है. और इस आजादी के महीने में बहुत कुछ आजाद हुआ, और मेरे ख्याल में ये आजादी जो है वो हमें अपने आप को भी देनी चाहिए बहुत सी चीजों से. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स, बट इसके लिए आप सबको हमारे साथ रहना पड़ेगा. मैं हूं आपके साथ 3 से 5. रिक्वेस्ट ऑन टेक्स्ट में मैं हूं आपके साथ, और हम रहने वाले हैं 5 बजे तक. ठीक 5 बजे तक आप लोगों के साथ. जल्दी से आ जाइए, यू कैन रिक्वेस्ट मी हियर एंड आई कैन प्ले. और जल्दी से स्टे ट्यून ट्यून कर लीजिए एफएम 100 को, और हमारे साथ शामिल हो जाइए. और अभी से आपके प्रोग्राम में हम लोग अभी से जो है वो मैसेजेस ऐड करेंगे, बिकॉज ये 2 घंटे का प्रोग्राम है. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने हमें इतने खूबसूरत जो है वो कायनात का हिस्सा बनाया. जब हम सो जाते हैं तो उसके बाद हमारे उठने के चांसेस जो हैं वो उस रब्बे कायनात के ऊपर होते हैं. हमारी सारी डोर जो है वो उनके ऊपर होती है, सांसों की डोर भी. तो चलिए जी प्रोग्राम का पहला सॉन्ग प्ले करते हैं. तेरी गुत नाल बन्ने होए दिल बड़े आंदे थे. आई विल बी राइट बैक, बट आप लोग भी जल्दी से आ जाए. तब्रेज खान हमारे साथ हैं जी. सबसे पहले तेरी चूड़ियां ने चूर की ते दिल झड़े आंदे, उत्तों अखियां ने यार जिवें ताजा अखबारों असीं पढ़दे ही रहने आं.

ओके जनाब, बात हो रही है कि आजादी का आजादी के जो है वो महीने में हम लोग गा गए हैं, और आजादी के बाद फिर जो है वो साल खत्म होने चला जाएगा, और बहुत ही काउंटेड से जिसे कहते हैं मोमेंट्स रह गए हैं।

Welcome back, Zizi Lab. Could you listen to me? Here your RJ Ram Shehzadi. 3 to 5. Zafar Sadiq keh rahe hain, Assalamu alaikum, Walaikum Assalam. Malik Wasim Iqbal hain. Are you? Alhamdulillah, I'm fine. Aur ji hamara program aata hai jumerat ko bhi 3 to 5 aur request on text aur isme aap log request karte hain aur hum wo gana chala dete hain. Purana hai, naya hai, Pakistani hai to hum log zarur play karenge. Jaldi se aaye aur hame bataye aap kaun sa song sunna chahte hain. Hari ab jaldi se aa jaye और आके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं. प्रोग्राम में आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं और हम वो गाना प्ले करेंगे 3636 पे. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, अलर्ट चार लिखेंगे, स्पेस देंगे और भेज देंगे 3636 पे.

वेलकम बैक जी जनाब, है योर आज रम शहजादी और जल्दी से आ जाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। और पाकिस्तानी सॉन्ग हैं तो जी हम प्ले करेंगे आपके लिए, और अगर तो इंडियन सॉन्ग आप जो है वो कहें तो वो नहीं कर सकते हम प्ले, काइंडली पाकिस्तानी जितने भी सॉन्ग हैं हम उसको प्ले करेंगे। और क्योंकि 14 अगस्त है और 14 अगस्त के हवाले से भी हम कुछ बातें करेंगे, पाकिस्तान हमारा है, इस हवाले से हम एक जबरदस्त एंथम सॉन्ग सुनते हैं। देखें जी, कुर्बानी की बात करते हैं हम, और इस शो में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये रिक्वेस्ट ऑन टेक्स्ट है, हर प्रोग्राम का एक जिसे कहते हैं पैटर्न होता है।

0: वेलकम बैक अरिजीत जिन्ना हर दिल का अब ये नारा है पाकिस्तान हमारा है. एग्जैक्टली जी, जब हम कोई ऐसा एंथम सॉन्ग सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है और सुकून सा मिलता है. बिकॉज देखें, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और ये हमारा घर, हमारी धरती है. और आजकल मैं एक फीलिंग से गुजर रही थी कि हमें एक घर जो है वो चेंज करना है, घर को छोड़ के दूसरी जगह जाना है. सो आई वॉज टोटली डिस्टर्ब. तो पूरा मुल्क छोड़ के हम एक मुल्क को, दूसरे मुल्क में हम गए, हमने अपना मुल्क बनाया, मतलब उसकी तो खुशी एक अलग जिसमें हम अपनी मर्जी से जी सकें. सो ये एक अच्छी बात है, लेकिन यकीन कीजिए कि ये कितना पेनफुल होता है, कितना ही दर्द होता है इसमें, ये आप महसूस नहीं कर सकते. तो इस मुल्क की हमें कदर करनी चाहिए. आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए हैं और सॉन्ग हमने लगा दिया है तारिक अवान और
1: गुनगुनाने लगे आप से मिल के हम.

0: वेलकम बैक जी जनाब, हियर योर आरजे रमशहजादे जी। 14 अगस्त कैसे मनानी चाहिए? 14 अगस्त 14 अगस्त वाले कपड़े पहन के मनानी चाहिए और बाजे बजाने चाहिए, जो कि हमारी आवाम करती है ना, ऐसे ही मनानी चाहिए ना। एक नया हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है बाजा, मतलब यही मैं तो यही बोलूंगी कि हमें जो है ना वो बाजे बजाने चाहिए, बिकॉज हमारे बाजारों में, हमारी मार्केट्स में बहुत बहुत ज्यादा इस चीज की बहुतात हुई हुई है। अब भाई 14 अगस्त का मतलब क्या था? आजादी क्यों ली थी वो तो किसी को पता ही नहीं है। ओके जी, हमें रिक्वेस्ट की है लतीफुल्ला खुसू साहब ने, लेकिन इससे पहले कि हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी करें, एक टाइम ब्रेक है, टाइम चेक है। आई विल बी राइट बैक।
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से

वेलकम बैक जी जनाब, है हाजिर हम शहजादी और मैं हूँ आपके साथ तीन से पांच। और हम आज बात कर रहे हैं जी आजादी के ऊपर। कामरान मसूद हमारे साथ हैं जी। मोहम्मद एजाज अली, कहाँ रास्ता भटक गए आप?

0: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cash back और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
2: At shopping a 5,000 rupees
1: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: 100 FM।
5: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

वेलकम बैक जी जनाब, हेयर योर आरजे इरम शहजादी। और हमेशा सच को जो है ना वो एक्सेप्ट करना चाहिए, रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा कोशिश करें आगे बढ़ें, तो साथ दूसरों को भी लेके जाएं, हसद जो है ना वो ना करें। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का मकसद यही था

जनाब, जिस तरह गर्मी में एसी हमें ठंडक देता है, सुकून देता है, वैसे ही हमारे दिमाग का भी तो एक कूलिंग सिस्टम होता है। लेकिन जब ये सिस्टम मुतासर हो जाए तो यूं लगता है जैसे पूरी जिंदगी का निजाम ही बिखर गया हो। नफ्सियात कहती है कि जब जहन मुसलसल दबाव में रहता है तो जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता इसका बोझ उठाने लगता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एक खराब एसी की तरह, ना सुकून मिलता है ना चैन मिलता है, और कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल महसूस हो जाता है। याद रखें, थका हुआ दिमाग सिर्फ आराम नहीं मांगता बल्कि तवज्जो, समझ, देखभाल भी चाहता है। ये मेरे अपने अल्फाज हैं, दिन भर में मैं भी कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ और फिर उनको कागजों के ऊपर लिखती रहती हूँ। जैसे एसी को वक्तन फवक्तन सवाई सर्विसेज और मुरम्मत की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे जहन को भी आराम की जरूरत होती है ना, मुस्बत ख्यालात, खुद पर तवज्जो देने की जरूरत होती है। सो जनाब, आपका एसी कौन है? आर आजादी के इन दिनों में खुद को भी आजादी दें भाई। क्या मतलब, आप गुलाम हैं अपनी ख्यालात के, सोचों के, या फिर सिक थॉट्स के? नहीं ना।

वेलकम बैक, युवराज जुर्म शहजादी में आपका साथ है। 3 से 5 और 4 बजने वाले हैं और फिर क्या होगा जी, 4 बजे के बाद 5 बज जाएंगे। तो इससे पहले कि 5 बज जाए, आप लोग टेक्स्ट करें 3636 पर, यू कैन टेक्स्ट हेयर और बताइए कौन सा गाना सुनना है। मैं प्ले करूंगी और प्ले करूंगी गाना वो जो आप सुनना चाहते हैं। हरिया, और गाना हो पाकिस्तानी।

वेलकम बैक जी जनाब, है गुरार जरम शहजादी और मैं आपके साथ हूँ जी। और कैसा आपको जो है ना वो चाहिए इस जश्न आज़ादी पे, आपको किस तरह से अपने आप को आप जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं और किस तरह आप इस जश्न आज़ादी को मना रहे हैं और क्या आप सिर्फ इस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे या कोई दरख्त या पौधा भी तो हम लगा सकते हैं ना इस जश्न आज़ादी पे। आप कोई पौधा लगाएं और उसको पाकिस्तान के नाम करें और फिर नफल पढ़ सकते हैं आप लोग। कोई ऐसा अच्छा काम पाकिस्तान की तरक्की में जो अहम किरदार अदा कर सकता है जिसमें आप जो है वो, मैं एक दिन देख रही थी, एक बुजुर्ग इंसान मेरे ख्याल में तुर्की से ताल्लुक रखता है और उसने कहा कि जब तक मैं मर ना जाऊं मैं पौधे लगाता रहूंगा। सो पौधा लगाना बहुत अच्छी बात है। कहीं नहीं तो आप अपने घर बार या इर्द गिर्द लगा लीजिए जहां पर एक ग्रीनरी का माहौल बन सकता है, क्योंकि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। सो ऐसा अच्छा काम कीजिए

वेलकम बैक जी जो नाम है योर जरम शहजादी, मैं हूँ आपके साथ ठीक 5 बजे तक, और तब तक के हम आपको जो है वो आज़ादी का जो है वो जश्न मनाने के बारे में आज बात हो रही है कि आप आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करेंगे और आज़ादी पे ऐसे कौन कौन से काम करेंगे कि जो आपको लगेगा कि जी वाकई जो है वो आज़ादी हासिल की थी हम लोगों ने इस 14 अगस्त पे। इस 14 अगस्त पे आप लोग क्या करने वाले हैं? और मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि 14 अगस्त के जो कॉस्ट्यूम में कपड़े हैं वो भरे पड़े हैं बाजार। और लेकिन दुख ये होता है कि मतलब सब लोग आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं बट कोई पाकिस्तान को साफ रखना नहीं चाहता। मतलब कोई भी होता है ना, किसी का भी कोई होता है फंक्शन। अभी कुछ दिन पहले अरबईन का मतलब एक जुलूस था तो उसमें मैंने देखा, आई वॉज लिटरली सैड कि हमारा दीन हमें ये नहीं सिखा रहा जो आप कर रहे हैं। मतलब वो लोग जिनके हाँ खाने के पैसे नहीं है, अगर उनको इन सारी जगहों से पैसे मिल, वो खाने की चीजें मिल जाती हैं तो वो खाना खा के ना रोड्स को गंदा कर देते हैं। ठीक है, अब इन मजालिस और इन सारी तालीमात का ये मकसद तो नहीं है ना। सो आई एम लिटरली सैड अबाउट दिस थिंग। मुझे बहुत दुख हुआ कि आप लोग जो हैं वो मतलब आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, जहां खाए वहां, जहां जहां मैं गई, जहां जहां से मैं गुजरी रोड से, इंतहाई गंदा रोड किया हुआ था, खा खा के वहीं पर फेंका हुआ था। और ये बहुत ही बुरी बात है और ये ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब 14 अगस्त है, आप लोगों ने 14 अगस्त पे झंडे लगाने हैं, सारा कुछ करना है, और फिर आपने क्या करना है, उन्हीं झंडों को पांव के नीचे रोंदना भी है। तो प्लीज, और फिर बाजे होंगे, प्लीज ये बाजे क्यों बजाते हैं मुझे ये समझ नहीं आती। करेंटली क्या मतलब है, व्हाट इज दिस? और जिसने भी ये प्रोड्यूस किया है, व्हाट इज द पर्पज? ओनली गेटिंग पैसा, मतलब पैसे इकट्ठे करने थे या अपना बिजनेस बनाना था इसलिए? और जितने भी जी शो लोग हैं वो सब ये काम कर रहे होते हैं।

वेलकम बैक जी जनाब. मैं तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है गर्मी में भी ठंड और सर्दी में भी और ठंड हो गई, क्योंकि जब हम पाकिस्तान का नाम सुनते हैं और पाकिस्तान के इतने जोश वाले मिल्ली नगमे सुनते हैं तो हमें और मजा आता है जी. लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जी आजादी के पीछे हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं. आंखें अश्कबार हो जाती हैं, ऐसे नहीं मिलती आजादी बाजे बजाने से. आजादी की महक महसूस ही नहीं होती. बिल्कुल बाजा इसलिए बजाते हैं उधर से क्या खतरनाक हफ को लाना होता है कतरीना कैफ को, और बरात के साथ बाजा इसलिए बजाते हैं. लो बताओ अब सनी चिड़ियोटी जी, तुसी गाल नू जड़ा ना मतलब किदा किधर पास से ले गए हो. तो खैर जो असल मानी है पाकिस्तान के, उसमें हमें जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए और इन सारी चीजों से परहेज करना चाहिए मेरे ख्याल में. और ये नहीं होना चाहिए.

ओके जी, तीन से पांच हमारा आपके साथ था। दुआओं में याद रखिएगा जी, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। बिल्कुल, इस आजादी पे आप सब लोग अपने आप को भी, इन सारे रस्मों रिवाजों से भी आजाद कीजिए।

0: बिल्कुल जिंदाबाद है बिल्कुल। इस आजादी पे आप सब लोग अपने आप को भी इन सारे रस्मों रिवाजों से भी आजाद कीजिए।
1: तू जो मिल जाए वो लगे मुझे।
0: सांसों ने इजाजत दी जिंदगी ने मोहलत दिया, आपके साथ मुलाकात होगी।
1: कभी तारों से करे बातें।
0: नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। बाय बाय, चाओ चाओ, अल्लाह हाफिज। इस आजादी पे सबसे पहले खुद को आजाद कीजिए और फिर बाकी सबको। और ये मुल्क हमारा है जी, हम इसका ख्याल रखेंगे अपने आखिरी दम तक। और यकीन कीजिए, इस जैसी जरखेज जमीन और जरखेज मुल्क कहीं पर भी नहीं, बिकॉज इसका जो मतलब है वो बहुत अहम है। Bye bye, Jaja. Jerem Shehzadi is going to signing out.

बेटर कह के छिड़ गई अगेन। नो कम्पेटेबिलिटी ये लगे प्लान्स, फिर से वाली एंटी को पैसों से कर्ज है। शादी कब कर रहे हैं क्या पूछना फर्ज है, कब तक चलेगी ये चाय पार्टी घर पे, देखने आए हैं दुपट्टा लो सर पे। सास का मसला कभी क्लास का मसला, कभी पप्पो या खाला या सास का मसला, मेरी उम्र बड़ी है या कमर बड़ी, अगर आपको मसला तो रखिए फासला। रिश्ता पसंद आया नहीं।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100। इरशादे बारी ताला है, जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मुजिब अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोग दोजख की तरफ हांके जाएंगे। सूरह अनफाल।
2: FM
3: 100। I just don't want to end up somewhere that feels the same.
4: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
3: What effect? Everything is about creating an impact. From fashion to finance to filming to flying.
4: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact. An effect.
5: The UMT effect. Step into tomorrow today.
6: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
7: At shopping of 5,000 rupees
6: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
8: HBL Freedom account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom account. Jahan khwab, wahan HBL.
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज प्लस डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागात से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
13: This program is brought to you by
14: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
8: and HBL Freedom account. Jahan khwab, wahan HBL. And
15: candy let out.
8: And
16: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात।
8: एंड
5: द यूएमटी इफेक्ट, स्टेप इनटू टुमारो टुडे।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका
2: at shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान।

0: अब किस बात का? अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटेबल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
2: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय द UMT इफेक्ट। स्टेप इनटू टुमारो टुडे।
5: म्यूजिक ऑफ योर चॉइस 24 आवर्स अ डे ऑन FM 100. Don't stop.

0: I just don't want to end up somewhere that feels the same.
1: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
0: What effect?
1: Everything is about creating an impact. From fashion, to finance,
0: to filming,
1: to flying.
2: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact, an effect.
3: The UMT Effect. Step into tomorrow today.
4: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: वेल, इट्स हैपनिंग।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: Hey yo, single again? Ujad gaya raaton ka chain. You deserve better ke ke chhid gayi again. No compatibility ya lage plans. Fir se wali auntie ko paiso se garz hai. Shaadi kab kar rahe kya poochna farz hai. कब तक चलेगी ये चाय पार्टी घर पे देखने आए हैं दुपट्टा लो सर पे कास का मसला कभी क्लास का मसला कभी पुप्पो या खाला या सास का मसला मेरी उम्र बड़ी है या कमर बड़ी अगर आपको मसला तो रखिए फासला रिश्ता पसंद आया नहीं

0: Kabulde.
1: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Honda Elantra जीतने का मौका.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रूपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: 100 FM।
7: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: किसने कहा था पैसे

0: Everybody come with me.
1: This is FM 100.
0: Around the world.
2: आप सुन रहे हैं FM 100, आपका अपना रेडियो स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
3: अज़ाने मगरिब पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तआवुन से।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज मगरिब का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशादे बारी ताला है, और कहो कि सब तारीफ अल्लाह ही को है, जिसने ना तो किसी को बेटा बनाया है और ना उसकी बादशाही में कोई शरीक है, और ना इस वजह से कि वो आजिज़ और नातवा है कोई उसका मददगार है, और उसको बड़ा जानकर उसकी बड़ाई करते रहो। सूरह बनी इसराइल।
3: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा,
5: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL, एंड
6: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनाम।
7: एंड द UMT इफेक्ट, स्टेप इनटू टुमारो टुडे।
8: आई जस्ट डोंट वांट एंड अप समवेयर दैट फील्स द सेम।
9: इट्स नॉट द सेम ब्रो, इट्स डिफरेंट, इट्स एन इफेक्ट।
8: व्हाट इफेक्ट? एवरीथिंग इज अबाउट क्रिएटिंग एन इंपैक्ट, from fashion to finance
9: to filming
8: to flying.
9: You're not just going to be taking lectures, you're going to be creating an impact, an effect.
7: The UMT effect. Step into tomorrow today.
10: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
11: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
12: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका
13: at shopping of 5,000 rupees
12: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
14: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
15: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
16: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
17: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
18: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिसपन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: This is your

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खार वहां HBL।
1: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है। ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए।
2: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: at 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: I just don't want to end up somewhere that feels the same.
2: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
1: What effect? Everything is about creating an impact. From fashion, to finance,
2: to filming,
1: to flying.
2: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact. An effect.
3: The UMT Effect. Step into tomorrow today.
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड और जीतें शानदार प्राइजेस तो देर किस बात की हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना
7: Well, it's happening आज भी. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
8: At shopping of 5,000 rupees
7: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: 100 FM।
5: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
5: At shopping of 5,000 rupees
4: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रूपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: किसने कहा था पैसे बचा?
4: फिनिक्स

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
4: दिस इज योर म्यूजिक।

0: 100 FM. 100 FM. The best music. Best music. Number one FM. We play the best music. We play the most music.
1: Oh, that's nice.
0: This is 100 FM.
2: This is FM 100. 100, 100.
3: Around the world.
4: आप सुन रहे हैं FM 100, आपका अपना रेडियो स्टेशन.
5: FM 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
6: अजान इशा पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से.
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एफएम 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. लाहौर और उसके मजाफात में नमाज इशा का वक्त हो गया है.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100. It's 8:30 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. जहां ख्वाब वहां HBL.
2: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
4: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
1: 100 FM.
5: छम छम छम किताबे लेके निकले हम. अम्मी ने कहा ना रुकना तुम. रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: सब को सब नहीं मिलता।
1: नंबर वन स्टेशन FM 100।
2: Well, it's happening आज भी, so keep up. बाटा पर जैस कैश से 50% कैश बैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका
3: at shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: One station.
2: 100 FM.
0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।

0: बिजलियां हैं बिजलियां, हाय रे मेरी सेल्फियां.
1: There's only one station that keeps you moving all day long.
2: FM 100. 100.
3: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
1: 100 FM.
6: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

से भी जाएं कुर्बान हम सौ दफा जाना हिसाब तो कभी किया ही नहीं मेरा खुदा गवाह उसने मेरे गुनाहों का अब तक हिसाब लिया ही नहीं तोहफे तहाइफ देते ये बज़ाहिर पर दिल तो किसी ने दिया ही नहीं मेरी तेरे बगैर जो जिंदगी गुजरी वो काटी है उसे जिया

पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।

0: the club.
1: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
4: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं. हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा. अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300 555 0011 पर.
5: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: sale, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per JazzCash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
1: At shopping of 5,000 rupees
0: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
2: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं, हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे
3: FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा।
2: अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300 555 0011 पर।
4: Ladies and gentlemen,
5: hello.

0: का जोर है, तुझे पटाने का एक तोड़ है।
1: वो क्या
0: है? बस है ना, चलना देखते हैं।

0: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par JazzCash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
1: At shopping of 5,000 rupees
0: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
2: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे
3: FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा।
2: अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
4: Spinning track after track, track after track of the music you love with the best DJs on the planet. Radio 100.